वो बंधन भी ना लगे। जो जो बंधन ऐसा नहीं मानता है वही उस काम को अच्छे ढंग से कर भी पाता है। इसे जो भी काम करते हैं वो बड़ी प्रसन्नता से कर पाएंगे, प्रसन्नता से करेंगे। जैसा मन वैसा गति होगी, या मतिर जैसा तुम्हारा बुद्धि है वैसे तुम्हारी गति होगी। आत्मा साक्षी विदुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः।

एक ही तत्व का अलग अलग नाम है। आत्मा कहो या साक्षी कहो, दो नहीं है। जो साक्षी है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही साक्षी है। विभू वही ईश्वर भी वही है, पूर्ण पूर्णता भी वही है, एक वही है, मुक्त भी वही है, खिल अक्रिया चित्त स्वरूप चैतन्य शक्ति वही है, और अक्रिया उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। तुम्हारे भीतर तुम्हें कभी तो अनुभव में आया होगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा। तब तुम उस एक के साथ हो। जिस वक्त तुम्हें कोई भाई नहीं लगा, तसल्ली लगी, तृप्ति लगी, पूर्णता लगा, उस वक्त तुम अपने आप में हो। तुम खुद ही तो तृप्ति हो, तुम्हें कोई चीज तृप्ति नहीं दे सकती है। गुरु के सानिध्य में, ज्ञान के सत्संग में, यज्ञों में बैठते हो तो एक पूर्णता का अनुभव होता है, तो वो आत्मा की अनुभूति हुई है उस वक्त। गुरु आत्मा इष्ट में भेद न जानिए। गुरु के पास आते क्यों, बैठते क्यों हैं? क्योंकि बैठते ही अपना मन शुद्ध हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, प्राण शुद्ध हो जाता है, वही पकड़ने लगता है, पूर्णता महसूस होने लगती है।

आत्मा है, वही साक्षी है, वही विभु है, पूर्ण है, एक मुक्त चित और अस्त्री है, जहां कोई क्रिया नहीं चल रही है। असंगो निस्पृह शांतो भ्रमा संसारवानिव, ब्रह्म से तुम अपने आप को संसार का अंग मान लिया, तुम हो असंग, हो असंग। तुम छोटे बच्चों को तुम पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए, मुस्कुराते बोलेंगे कुछ नहीं। अनुभव किया कि नहीं, बच्चे खेलते होते हैं, दो तीन चार साल के बच्चे, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, वो इधर उधर देखेंगे कुछ नहीं। यही निष्प्रह अवस्था है, हमें चाहिए कुछ नहीं। जब भी हम पूर्ण अपने में महसूस करते हैं, अंदर से रहते कुछ चाहिए नहीं, तृप्त है। तृप्ति तुम खुद हो, पूर्णता तुम खुद हो। भ्रम हो गया तेरे को, अपने आप को भिखारी मान लिया, धनवान का यही पहचान है जो तृप्त है हमारे हिसाब से। चार हो वही भिखारी है, जो निष्प्रिय है वही धनवान है। मुझे अभी ज्ञान की चाह उठ रही है, कुछ अच्छा काम करने की चाह उठ रही है, क्या हम सब भिखारी है क्या?

0: एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम मधुरम यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नम्बर 13 न्यू रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
0: नमस्ते स्वागत अनि अभिवादन यो कार्यक्रम मधुर

0: शीर्षक कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

दैत्यों में कृष्ण प्रह्लाद है, वही प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो कृष्ण ही है। दोस्तों जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल हर समय जो बीत रहा है, लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वो गरुड़ है।

यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण हैं। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है, और ये वायु कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ हैं, और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी हैं। भागीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण हैं।

हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण हैं।

हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों। और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं यही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं।

कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह कृष्ण को ही माने, और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी, और क्षमा मैं ही हूं।

श्रुति यानी कि सुना हुआ, ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं। बृहत्साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठत्व मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित करता हो, यानी कि वो सबसे बड़ा गायन जो ऋचाओं में स्वर प्रधान है। छंदों में गायत्री छंद हो, यानी कि गायत्री महामंत्र, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं।

छल कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जैसे दोस्तों क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे छल भी तो होते हैं ना। जितने भी छल हैं इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वो जानते हैं? जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो वो है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वो भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी

यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय हैं, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं।

मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। दबाने का काम सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या, लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है दोस्तों। गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है वो होता है मौन, और वह मौन मैं हूं। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं।

हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं, वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे।

कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता दोस्तों। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं, वो तो बिना सीमा के हैं।

इस श्लोक में कृष्ण अपनी सारी विभूतियों को एक सूत्र में बांधते हुए जनरलाइज करते हुए कहते हैं दोस्तों कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, चाहे दमन देखें या प्रभावशाली व्यक्ति देखें, छल देखें या गायन सुने, हर किसी चीज, क्रिया, प्राणी में जो भी तेज, ऐश्वर्य और कांति से भरे हुए हों, तो ये जान लीजिएगा कि वो कृष्ण का ही अंश है। इससे सीखना है दोस्तों कि जो भी आप करें उसमें अगर सबसे उत्तम आपको होना है तो उसमें कृष्ण को ढूंढिए।

0: अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।
1: आज हम आपको गीता के पहले अध्याय से परिचित कराने जा रहे हैं। करने से पहले शुरू सबको मेरा प्रणाम, सुनाने आया गीता में है श्लोक मेरा नाम। पहला अध्याय शुरू, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन है गहरे दुख में और सम

अंत में अर्जुन अपना दुख प्रकट करते हुए रथ के पिछले भाग में बेबस और हताश होकर बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।

0: ज्ञान।
1: जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11, विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं।

अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे। वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है, जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे।

अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे, अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे ना होती दोस्तों, कि आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी।

कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है, चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए।

कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा, कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं? कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।

कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है, लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा,

कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को

कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़, सब उन्हीं की माया है, और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने

लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है, उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने, प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी।

ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे, और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया।

दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा।

क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, हजार सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था।

असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हम, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखें उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हो। संजय कहते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है।

अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी, अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था, उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है।

आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना, तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा अनेक पेट न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं हे विश्वरूप मैं आपके न अंत को देखता हूं न मध्य को और न आदि को ही।

0: अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम श्रीमद् भगवद् गीता ज्ञान यति नै। नमस्ते।

प्यारे श्याम सुंदर ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरा भी मूल्य है, कोई मुझे खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। एक उपाय है, एक रास्ता।

नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी माँ जगदम्बा माँ सरस्वती ये सब मेरे ही रूप हैं, ये सब मुझे बहुत प्रिय हैं।

प्यारे श्याम सुंदर ही ये घोषणा कर रहे हैं कि सबसे अधिक मुझे प्रिय राधा रानी है, उनका नाम मुझे उनसे भी अधिक प्रिय है। और ये भी बताते हैं कि बिना राधा रानी के मैं शोभायमान नहीं हूं, मेरी शोभा नहीं है बिना राधा रानी।

कृष्ण से पहले जो श्री है वो श्री राधा रानी है। केवल कृष्ण कहे तो शोभायमान नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One 104.8.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत गैस अपच ये समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिन भर को जीवन लाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै बिहान को शुरुआत हल्का महसूस सँग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत गैस अपच र अम्ल पित्त को लागि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: हमारी शादी को कितने दिन हो गए?
1: 2 हफ्ते।
0: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है, क्या जी चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है,

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: कैप्टन रेग्मीज फार्म हाउस।
2: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङ का प्रणेता श्री श्री रवि शंकर ज्यू को प्रवचन श्रृंखलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौ।
1: एक निंदनीय स्थिति में लेके आते हैं और परमात्मा को बाहर देखते हैं, कहीं दूर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति से मूर्ख और कोई नहीं। भाई ईश्वर तुझमें है, तेरे ख्याल उसी के हैं, तेरे भावनाएं भी उसी में चल रही हैं, सब कुछ उसी में है। उसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो कोई तो खोजता है ईश्वर अंदर और जगत को संसार को दोष देता रहता है, गाली देता रहता है, संसार को निंदा करके ईश्वर की पाने की चेष्टा में कुछ लोग लगे रहते हैं, ये भी मूर्ख है। और कोई लोग खुद को निंदा करते हुए कहीं दूर पर ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। जब लोग बोलते क्या तुम ईश्वर हो, ये बड़ा अपराध है। कोई कह दे कि मैं ईश्वर हूं, ये तो बड़ा ब्लास्फेमी बोलते अपराध है, बहुत बड़ा गलती कर गया अपने आप को ईश्वर बोलता। ये विदेशी लोगों का ख्याल है, अपने आप को ईश्वर कहना बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। क्यों, तुम तो पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कैसे ईश्वर हो सकते हो। जितना खुद को निंदा कर सकते हो उतना निंदा करते हैं, और ईश्वर बड़े दयालु करुणालु सब गुणों के आगार सागर है, कहीं दूर है, पता नहीं स्वर्ग में ऊपर, मरने के बाद कभी मिलन कभी एक हो गया हो जाए। इस तरह की एक आशा लगा के ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं पाश्चिमात्य संस्कृति का ये बहुत। पश्चिम में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि तुझ में ईश्वर है। ईश्वर तुझ में भी है, तेरे बाहर भी है। और हमारे हिंदुस्तान में दुनिया को गाली दे रही माया है, ये सब बेकार है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, अंतरात्मा है, अपने अंदर आत्मा में ही खोजो और बाहर सब बेकार है। इस संसार को गाली दे दे करके हम थक गए, मगर वैदिक परंपरा ये नहीं है। संसार को गाली मत दो, यह प्रकृति लीन है सब महेश्वरा, इस प्रकृति में लीन है परमेश्वर। भगवान कृष्ण कहते भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रे वसा अहंकारम इति अम्मे बिन्ना प्रकृति रष्टदा। मेरी प्रकृति है दैवी शेषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, ये देवी है, इसको नमन करो, इसको नहीं दोष मत दो ना। समाज की निंदा करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते, संसार को कुचल करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। संसार को वंदना करो, सेवा करो। भाई यदि ये संसार ईश्वर की ही एक ईश्वर से रचाई गई एक तस्वीर है, और तुम तस्वीर को निकम्मा समझते हैं तो तस्वीर बनाने वाला इतना और निकम्मा होगा। तस्वीर को तुम गाली देते तो किसकी मिली वो गाली, किसकी हुई? कोई ईश्वर की ही निंदा हो। ये ना समझ है लोग जो संसार की कर करके ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। मगर जनक को अष्टावक्र एक और ही बात कह रहे हैं, भाई तेरे भीतर बाहर परमात्मा है, सिर्फ भीतर ही नहीं है और सिर्फ बाहर ही कहीं दूर ही नहीं है, भीतर भी बाहर भी, नित्यम निरंतरम ब्रह्मा सर्वभूत गणेश तथा। इतना कहकर अपना वाणी को उन्होंने विश्राम दिया। एक ज्ञानी सिर्फ बोलते ही नहीं रहता, सुनता भी है। जितना बोला गया है उसको सुनने वाले ने सुना है क्या, उसको कितना ग्रहण किया ये भी देखता। तो अष्टावक्र जी ये बोल के चुप हुए, तो दूसरा प्रकरण जनक ने बोल, अब जनक की भारी आई, तो दूसरा प्रकरण जनक ने बोल, अब जनक की भारी आई।

सारा जीवन एक प्रयत्न है। जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते उसको अभिव्यक्त करने जन्म सूक्ष्म से स्थूल मगर मुक्ति स्थूल से फिर सूक्ष्म के ओर।

स्थूल को तो पा लिया हम, शरीर स्थूल है, पर स्थूल शरीर से सूक्ष्मता की ओर चल पाते हैं। यही आत्मज्ञान स्थूल अनेकता है, सूक्ष्म एक है। अनेकता से एकता की ओर जाने की ही जीवन है।

0: विविधता में खो जाता है, खो के जड़ हो जाता है, पर जैसे होश आया इसका बंधन महसूस होने लगा। अरे भाई मैं कहां था, मैं कौन था, कहां पर क्या। बंधन का महसूस होना ही एक बहुत बड़ी बात, फिर मुक्ति के ओर चल पड़ना जीवन का सच्चा पथ है। सहज है, अष्टावक्र अहो निरंजन। अक्सर लोग प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, उत्तर सुनते भी नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए प्रश्न पूछते, मैं भी बैठा हूं यहां पर, और जो उत्तर देने वाले उत्तर देते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। अरे प्रश्न पूछना हमारा काम, उत्तर लेना थोड़ी ना, कि लोग भी जान जाए हम भी बैठे हैं सभा में और हम भी बुद्धिमान है, प्रश्न पूछने वाले बुद्धिमान समझा जाता। जो बोलना था बोल के चुप हो गए अष्टावक्र, जनक के तरफ देख रहे हैं, जनक के मुंह से एक उद्गार निकला, अहो। कुछ पता चल गया, कुछ उपलब्धि होगी, अभी तक जो खोया तो वो मिल गया हाथ में। करीब करीब उछले वो अपने कुर्सी से, अहो। कुछ ऐसा जब घटना घट जाता है, आदमी चुपचाप नहीं बैठ जाता, सोए सोए नहीं सुनता, हो नहीं पाता, उसके भीतर से ऐसा उद्धार निकलता है, ऐसे शब्द हमारे भीतर से निकलते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। उसका अर्थ नहीं है, उसका भाव है, वो भाषा से परे है, सबके पहचान में है। अहो कहने पर वो चेतना जागी, अहो निरंजनो, वाह मैं अपने आप को क्या समझ बैठा, अशांत, मैं निरंजन हूं इसका मुझे खबर ही नहीं था।
1: अवस्था आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।